नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Faza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: It's
14: music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाए एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
14: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
14: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
14: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
14: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
14: टेस्ट भी, वाइब भी।
15: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: This is a public service announcement.
14: The station that plays
15: foot tapping music.
16: Hazar 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: फजा 97.1 FM, आई लव इट।

Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Hello, hello, hello. A very beautiful and exciting morning to all my listeners who are listening me right now. तो लिसनर्स रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की होस्ट

कम्युनिकेशन और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट के पैटर्न को हम लेके चले अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। सॉरी लिसनर्स, पूरी कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर बनाएं आपके आज के इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत, एक्साइटिंग और मीनिंगफुल। सो वेल लिसनर्स, अगर अभी तक आपने अपने इस दिन का आगाज नहीं किया सो इट्स अ टाइम कि आप अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक नए दिन का और एक अच्छे दिन का आगाज इसी तरह से होता है कि आप एक हेल्दी सा मील लें, क्योंकि जैसा कि अब हमने पूरा दिन स्पेंड करना होता है, ढेर सारे काम काज करने होते हैं और जिंदगी की गाड़ी को आगे लेके चलना होता है। सो इन सभी कामों के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। सो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है ब्रेकफास्ट से। सो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो कि डेली बेसिस पर अपना ब्रेकफास्ट कर देते हैं स्किप, दिस मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू के ब्रेकफास्ट लाजमी किया करें और कोशिश किया करें कि आप अपनी जिंदगी को एक मामूल के मुताबिक चलाएं। जैसा कि लाइफ में हर एक चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, इसी तरह से आपके मील का भी एक टाइम फिक्स होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी जिंदगी गुजारें सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट दिन में 3 मील्स लाजमी लें। सो इसलिए आपको कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। जी तो लिसनर्स, मुझे बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करते करते सुन रहे हैं। सो आपको बता देती हूँ 01157100971, ये हमारे रेडियो फजा 97.1 FM का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि मेरा और आपका रबते का नंबर, कि वो नंबर है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। सो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं अभी इस नंबर पर जाकर जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका कोई भी पसंदीदा टॉपिक शो में शामिल करें या फिर आपका कोई भी फेवरेट साउंड ट्रैक हम अपने शो में शामिल करें सो उन सब चीजों के लिए भी आप हमें इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। सिंपली आपको करना कुछ यूं होगा कि इस नंबर को कर लेना है सेव, वहां जाके आपने अपने नाम के साथ कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमें लिखकर भेज दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी रिकमेंडेशंस को जरूर फुलफिल करें और उन्हीं सभी टॉपिक्स को शो में शामिल करें जो कि आप सुनना चाहते हैं या जिस हवाले से आप बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि ये नंबर है आपका और मेरा कम्युनिकेशन का नंबर, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से हो कि कुछ आपकी बातें सुनी जाएं और कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएं। साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। ना सिर्फ ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रह सकते हैं और आपको जितने भी अपडेट्स चाहिए रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, तो वो सब अपडेट्स आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगी। और साथ ही बता देती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, जिसे आप आसानी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। See the listeners, what are you waiting for? अब से हम बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने सफर का आगाज कर दिया है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने सफर का आगाज नहीं किया या फिर आप पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफर बन जाए और भी ज्यादा खूबसूरत, सो इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। C
से। तो लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं, सो मैंने शेयर कर दिए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी में

कहीं ना कहीं मगन होंगे। जैसे कि इस वक्त 10 बज चुके हैं, सो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग इस वक्त अपने ऑफिस या फिर कारोबारी हजरात अपने बिजनेस की जानिब रवां दवां हो चुके होंगे। और भी से बच जाती हैं हमारी वर्किंग वूमेन, तो वो भी इस वक्त काम में थोड़ा मसरूफ होंगी या फिर होंगी ऑफिस के रास्ते में। सो अगर आपके माइंड में चल रही है कोई भी उलझन या कोई भी चीज़ आपको कर रही है डिस्ट्रैक्ट, तो आपने बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ और जो काम करने का सोच रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, एंड आई होप कि वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए तो लिसनर्स, गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शो में करेंगे बहुत सी गपशप, कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी कहानियां सुनाई जाएंगी, लेकिन शो का आगाज करते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक से। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। आप सभी से मुलाकात होती है ट्रैक के उस पर, तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहें।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Hits.
14: Music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली ज़ैनब फातिमा, और आप सब सुन रहे हैं डीवर डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे।

सो वेल लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एक बार फिर से उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, तो साथ ही साथ जिन जिन ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ बताते चलिए कि आप दुनिया के किस कोने से ताल्लुक रखते हैं और आप हमें क्या काम करते हुए सुन रहे हैं। तो लिसनर्स, जरा कल के मैच के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कल हम सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एंड आई नो सभी लिसनर्स जो भी इस वक्त मोस्टली हमारी जो कम्युनिटी है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, सो कल के मैच के हवाले से आई थिंक सो मोस्टली लिसनर्स का दिल थोड़ा सा मायूस होगा और हो सकता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा उदास हो, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो उसका एंड तो फिर होता ही होता है, और साथ ही साथ ये कि हार और जीत तो फिर जिंदगी का हिस्सा है। सो अगर हम ये सोच लेंगे कि अगर हमारी फेवरेट टीम एक मैच नहीं जीत सकी, सो जिंदगी खत्म हो चुकी है या फिर जिंदगी बिल्कुल रुक चुकी है, सो ये कुछ अच्छा नहीं होगा। सो कोई बात नहीं, है रहा, इट्स ओके। वैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे भी कल था कि थोड़ी उम्मीद थी कि शायद इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया जा सकता है,

सोजे लिसनर्स, इसी के साथ ही हमें मिली है एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन. सो हमारे एक लिसनर हैं जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि ये गाना मैं शो में प्ले करूं. सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा 97.1 FM की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने सभी लिसनर्स का ख्याल रखे और शो में उसी तरह की बातचीत हो, गुफ्तगू हो जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं और ठीक वैसे ही गाने प्ले हों जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद है. सो दी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक. होती है आपसे मुलाकात ट्रैक के उस पर. तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग.

के लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वैसे अगर मैं आपको आपस की बात बताऊं तो ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी नहीं सुना. सो इट्स माय फर्स्ट टाइम. और ये भी हमारे इन लिसनर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गाने के बारे में बताया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे शो में शामिल कर लिया जाए और मैं भी सुन लेती हूँ, आप सभी भी सुन लें. तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको ये ट्रैक? अच्छा था, डिफरेंट था. पर्सनली मुझे जिस तरह के गाने पसंद हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, बट अच्छा था. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डीवा डायलॉग के इस सफर में डेली बेसिस पर हम अपने दिन का शो का स्टार्ट करते हैं ना सिर्फ म्यूजिक से बल्कि पॉजिटिव मोटिवेशनल बातों से, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो कि हम सभी की जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट करें और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए. और अगर कहीं आप किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर मायूसी का शिकार हैं तो हमारे ये पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सुनकर आपकी वो मायूसी दूर हो जाए. सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा ही पॉजिटिव सा मोटिवेशनल सा कोट. आई होप सो आपको ये कोट बहुत अच्छा लगेगा और ये आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तब्दीली मरतब करेगा. जी तो लिसनर्स, कभी आप सबने ये चीज़ सोची कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कोई मुश्किल ना आए, लेकिन क्या मुश्किलात के बिना हम कभी मजबूत बन सकते हैं?

जी तो लिसनर्स, इस बात से ये चीज साबित होती है कि जिंदगी में इंसान तो यही चाहता है कि मुश्किलात ना आए, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो, तो इंसान कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। अगर आपको हर चीज मुयस्सर हो जो आप चाहते हो, एग्जैक्ट वैसा ही हो जाए, तो क्या आप अपनी जिंदगी में घर से बाहर निकलोगे? क्या आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो हमारा आज का ये जो कोट है वो भी इसी चीज से रिलेट कर रहा है, आप सभी से शेयर करती हूँ। सो अवर कोट सेज, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट देयर इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ड फॉर। सो सिंपल सी लाइन है, लेकिन अगर आप डीपली इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो बहुत ही ज्यादा डीप है। सो बेसिकली कोट ये कहता है कि एक जहाज हमेशा अपनी बंदरगाह में तो बिल्कुल महफूज रहता है, लेकिन जहाज इसीलिए नहीं बनाए जाते कि वो बस एक जगह खड़े रहें। जहाज तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो सफर पर रवाना हो। हम सबका भी यही हाल है, हम अपनी जिंदगी में कम्फर्ट जोन चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम बहुत आराम से सुकून से जिंदगी गुजारें, कुछ मुश्किल ना हो, बस अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहें। लेकिन जिंदगी इस चीज़ का नाम नहीं, जिंदगी इस चीज़ का नाम है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, बाहर की दुनिया को देखें,

डियर लिसनर्स, बहुत सारे लोग हम में से, आप में से, मेरे में से ऐसे भी हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने कुछ न्यू ट्राई किया या हम इस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दिया जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर जहाज सिर्फ किनारे पर खड़ा रहे तो वो कभी समुन्दर की गहराइयों को नहीं देख सकता। ठीक इसी तरह से जब हम अपनी जिंदगी में, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम जिंदगी की उन खूबसूरती और खूबसूरत चीजों को नहीं देख सकेंगे जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद मुयस्सर होंगी। सो ये तो एग्जांपल थी एक शिप की। अब जरा ह्यूमन नेचर से रिलेटेड एक एग्जांपल आप सभी से शेयर करती हूँ। सो बेसिकली अगर हम इंसान भी हर वक्त अपने घर में रहें तो हम भी सेफ जोन में होंगे, लेकिन हम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। जिंदगी का असल मजा तो उन्हीं तूफानों में से गुजरने में है कि जब आप कुछ ऐसा करो जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, चैलेंजिंग हो, चैलेंज एक्सेप्ट करो और जिंदगी में कुछ नया करके दिखाओ। और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उन सभी ने अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ा है, कम्फर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। तो लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, कामयाबी आपके कदम चूमे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, जिंदगी को, लाइफ को एक्सप्लोर करें, नेचर को एक्सप्लोर करें। इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी चीजें हैं इस दुनिया में, करने को बहुत सारे काम हैं। अगर तो एक्सप्लोर की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है कि किसी भी इंसान को बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने से पहले अपने अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने फ्यूचर को देखें, या फिर आप अपनी हॉबीज़, चॉइसेस वगैरह, इन सब चीज़ों को देखें। आपको बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन उनको यही मालूम नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। सो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को समझें, ये चीज़ समझें कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या ना पसंद है, आप ज़िंदगी यानी कि इस दुनिया में क्यों आए हैं और आपका आने का मकसद क्या है। फिर उस हवाले से ही आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। सो ज़रूरत है कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया को देखें। सी तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट मोटिवेशनल कोट। आई होप सो आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वेल, इस हवाले से आप सभी का क्या कहना है? 01157100971 ये है मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कोट कैसा लगा।

सीधे लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी अभी हमें मौसूल हुई है एक प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन. सो हमारी एक लिसनर है जिनका कहना है कि ये हिंदी गाना शो में प्ले किया जाए. सो क्यों नहीं, हम आपके रिक्वेस्ट को जरूर फुलफिल करेंगे और आपकी पसंद का ये गाना जरूर शो में शामिल करेंगे. सीधे लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर से करते हैं गपशप का सिलसिला जारी, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं ठीक 2 घंटे तक साथ साथ, तो गपशप तो चलती रहेगी और बहुत सारी बातें होंगी. लेकिन फिल वक्त के लिए ये गाना सुनते हैं.

सीरियल लिसनर्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने आज के दूसरे मोटिवेशनल कोट की जानिब। अच्छा, बेसिकली ये कोट हमें ये रियलाइज करवाएगा कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए कितना जरूरी है और हर इंसान को अपनी वर्थ का आइडिया होना चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है कि अक्सर औकात हम दूसरों की बातें सुनकर अपना दिल बुरा कर लेते हैं, या फिर ऐसे समझते हैं कि अच्छा अगर किसी इंसान को हम अच्छे नहीं लगते या फिर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेकर अच्छा नहीं है तो इट मींस कि हम वैल्यूएबल नहीं हैं, हमारी कोई वर्थ नहीं है। सो उन सभी लोगों के लिए जो लोग दूसरों की बातों को बहुत गौर से ध्यान से सुनते हैं या फिर अपने मूड को दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल सा कोट है। आई होप सो कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में काफ़ी मदद देगा और आपको जिंदगी के एक नए ट्रैक पर ले आएगा।

basically the code says a diamond does not lose its value because it is dirty. So basically simple सा सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी खूबसूरत चीज होती है, मिसाल के तौर पर जैसे एक डायमंड है, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फॉर सम रीजन उसके ऊपर डस्ट लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो क्या वो अपनी वैल्यू खो देगा? नहीं, एग्जैक्टली. इसी तरह से अगर लोग आपको कुछ कह देते हैं या लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो क्या इससे आपकी जात को फर्क पड़ना चाहिए? नहीं. क्या इससे आपकी वैल्यू कम होती है? बिल्कुल नहीं. हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. कभी कोई हम पर तनकीद करता है तो कभी कोई हमारी मुहालिफत करता है. ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह हर 10 में से 9 लोग आपको पसंद करें. बाज़ोकात बाज़ जगह ऐसे भी होती है कि 10 में से 8 लोग आपके अगेंस्ट होते हैं. लेकिन क्या इन सब चीज़ों की वजह से हमें अपना दिल छोटा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? एज लॉन्ग अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आप अपनी जिंदगी में फोकस हैं, या फिर आपको खुद पर यकीन है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि इधर उधर आसपास के लोग आपके बारे में आपके हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, बेसिकली अब इस चीज़ के ऊपर, इस कोट के ऊपर ये चीज़, एक बात मेरे माइंड में आई, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी से भी शेयर की जाए. अच्छा, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका सर्कल. सो अगर आपका सर्कल सपोर्टिंग होगा आपके लिए, तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे. बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता, मतलब वो उनको सपोर्ट करने की बजाय तनकीद करते हैं, हर काम में क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर आपको उस तरह से एडमायर नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए. सो इस तरह की चीज़ों की वजह से इन सिचुएशंस में भी इंसान होता है कि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता है. सो हमेशा कोशिश किया करें कि दूसरों की बातों को खुद पर असरअंदाज मत होने दें, और साथ ही साथ कि जब भी आप दोस्त बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा देख कर दोस्त बनाएं, और बहुत ही अच्छा और लिमिटेड सा सर्कल बनाएं, क्योंकि दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके साथ लाइफ टाइम चलते हैं. तो अगर अच्छे होंगे तो ये आपके लिए सहारा बनेंगे, और अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं होंगे तो हमेशा आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा. इस हवाले से, इस चीज को लेकर और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आ रही थी, सोच रही थी कि आप सभी से शेयर करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो अब हमें इस कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा. सो ये चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब. आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर. तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग इसी तरह से जुड़े रहें.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली सैना फातिमा। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी सुन रहे हैं डीवा डायलॉग, जो कि खास स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है हमारी सभी डीवास के लिए, यानी उन वुमेन्स के लिए जो इस वक्त घरों में मौजूद होती हैं, जिंदगी से बोर हो रही होती हैं और उनको चाहिए होता है कुछ एक्साइटिंग। सो इसीलिए हमेशा की तरह हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए मजेदार सी मजे मजे की रेसिपीज, साथ ही साथ कुछ ब्यूटी टिप्स और मजेदार सा इंटरटेनिंग सा म्यूजिक। जैसे कि लिसनर्स आपको और मुझे गुफ्तगू करते हुए गपशप करते हुए हो गया है एक घंटा कंप्लीट, और देखा आप सभी ने कि किस तरह से जब हम किसी से दिली तौर पर बात कर रहे होते हैं या फिर हमारा बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो बिल्कुल भी इसी तरह से वक्त का अंदाजा नहीं होता और वक्त कितना जल्दी जल्दी तेजी से गुजर जाता है। जैसे कि आप सभी की पसंदीदा फरमाइशें हमें मौसूल हो रही हैं, और इसी तरह से एक और हमें मैसेज आया है कि उनका फेवरेट गाना में शामिल कर दिया जाए, तो जी नहीं क्यों नहीं, जरूर आइए मिलकर सुनते हैं अपनी इस प्यारी सी लिसनर की रिकमेंडेशन, और आप सभी मुझे बताइएगा कि आपको इनका रिकमेंडेड गाना कैसा लगा। साथ ही साथ आप सभी भी शेयर कर सकते हैं अपनी पसंदीदा फरमाइशें हमसे, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सभी चाहने वाले लिसनर्स का ख्याल रखें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्यारा सा ट्रैक आप अपने किसी चाहने वाले को डेडिकेट करना चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, हम वो गाना ज़रूर प्ले करेंगे। सो फिलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक, और ट्रैक से उस पर गपशप का सिलसिला जारी करते हैं और ज़रा आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो फीमेल फेवरेट सेगमेंट होता है, क्योंकि खाना पकाना हो या फिर हो खाना खाना, ये तो हम सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक, ट्रैक से उस पर होती है मुलाकात। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहिए।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। सो डियर लिसनर्स, एक बार फिर से बताती चलती हूँ 01157100971 इट्स अवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि मेरा और आपका राब्ते का नंबर, एंड www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और अपने दिन को, अपने मूड को मजीद खुशगवार बना सकते हैं। तो डियर लिसनर्स, अगर आप इस वक्त ऑफिस में हो रहे हैं बोर या फिर हेक्टिक रूटीन, हेक्टिक काम करने का आपका दिल नहीं कर रहा, तो एक छोटा सा ब्रेक लें 5 से 6 मिनट का और रिलैक्स फील करें, ठंडा पानी पिए और साथ ही साथ हमें ट्यून करें। अच्छा, समटाइम्स बाज़ूकात जब हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं तो इंसान का माइंड बिल्कुल थक जाता है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आप जो भी कोई काम कर रहे होते हो वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जब कभी आपके साथ भी हो ऐसी सिचुएशन तो आपको फौरी तौर पर चाहिए कि आप 5 से 6 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक लेने से ये होगा कि माइंड रिलैक्स होगा और वो जो एक स्ट्रेस क्रिएट हो चुका होता है, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, वो भी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है और फिर जब इंसान फ्रेश होकर एक बार फिर से स्टार्ट करता है तो वो काम बहुत अच्छे से, डेडिकेशन से होता है। अच्छा, पेपर्स में भी ऐसा होता है ना, आप सभी के साथ जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब कभी हमारा एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूसली सबक पढ़ रहे होते हैं तो एक टाइम पर आकर माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। लेकिन उस मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, 5 से 6 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि हम एक नया स्टार्ट करें और फ्रेश स्टार्ट करें। इसी तरह अगर कभी जिंदगी में भी आप थक जाएं रोजमर्रा के कामकाज करके वही बोरिंग हेक्टिक रूटीन से, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी से भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, वोकेशंस पर जाएं, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि दुनिया के 90% जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाते हैं। तो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही हमें अभी एक और सॉन्ग रिकमेंडेशन आई है, यानी कि हमारा एक लिसनर है जो चाहता है कि हम ये गाना शो में प्ले करें। गाना थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा सैड है, लगता है हमारे इन लिसनर का दिल हो गया है, टूट चुका है या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि हम इतना इमोशनल गाना शो में प्ले करें। वेल, कोई नहीं, हम प्ले कर देते हैं क्योंकि हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि हम अपने लिसनर्स का ख्याल रखें और जो गाने वो सुनना चाहते हैं वही लगाएं। तो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक इस बार होती है आपसे मुलाकात एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट सेगमेंट है कुकिंग सेगमेंट, तो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बेसिक हैं और इंस्टेंटली बन जाती हैं। तो जी आइए सुनते हैं पहले ये गाना।

सी तो लिसनर्स, अब जरा शुरू करते हैं अपना आज का सेकंड सेगमेंट जो कि है हमारा लास्ट सेगमेंट और आप सभी का फेवरेट है, स्पेशली तमाम तर लेडीज का, क्योंकि डेली बेसिस पर ये सोचना कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्या चीज ऐसे बनाएं कि घर में मौजूद हर इंसान को, हर शख्स को वो अच्छी लगे। साथ ही साथ आजकल की जैसे कि बिजी हेक्टिक रूटीन है तो हर इंसान ये चाहता है कि रेसिपी हो, मजेदार हो, डिलिशियस हो, लेकिन बहुत ही कम वक्त में बन जाए। तो मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर ऐसी ही रेसिपीज लेके आती हूँ जो कि बहुत सिंपल होती हैं, बेसिक होती हैं और आसानी बन जाती हैं। तो हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए द स्पाइस किचन में ऐसी ही मजेदार सी रेसिपीज। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपसे आज की फर्स्ट रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले

लेकिन उससे पहले मैं ये कह रही थी कि आप सभी अपनी डायरी नोटबुक ओपन कर लीजिए ताकि मैं जब आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं तो वो जल्दी जल्दी से आप नोट कर लें और आपसे कुछ भी मिस ना हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ मिस हो जाएगा तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू।

कोजी लिसनर्स, आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है, इट्स अ इटालियन क्लासिक रेसिपी, चिकन पार्मिजान विद स्पेगेटी। सो आई थिंक सो सुनने में आप सभी को लग रही होगी कि ये तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत है और आप ये मजेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले चिकन, अच्छा चिकन आप ले सकते हैं 1 kg, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चिकन को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है, ताकि आप इस रेसिपी को अच्छे से बना सकें। वैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से। अब जरा अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एग 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, स्पेगेटी 1/2 kg, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आई थिंक सो 1/2 kg इज इनफ, लेकिन अगर आप लोग क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसको अपने हिसाब से फुल केजी भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए टमाटो सॉस 1 कप, मोजरेला या फिर चैटर चीज 1/2 कप, अब जरा स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। सो इस रेसिपी में शामिल होगा काली मिर्च पाउडर, गार्लिक पाउडर, साथ ही साथ 1/2 teaspoon नमक हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, और चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। सो हम बहुत ही कम मसाले यूज़ कर रहे हैं, इसके मेन रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती कि रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए या फिर उस पर बहुत से हैवी मसाले हों, क्योंकि आई फील लाइक कि जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा भर भर कर मसाले डाल दें तो वो नेचुरल टेस्ट और अरोमा बरकरार नहीं रहता। सो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम इसका नेचुरल टेस्ट और अरोमा बरकरार रखें, इसलिए हम यूज़ करेंगे बहुत ही कम स्पाइसेस।

दी लिसनर्स, ये तो थे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने कर दिए आप सभी से शेयर। सो अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, तो जरा चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस रेसिपी को। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से सभी सुनने वालों को खुशामदीद करती हूँ दीवा डायलॉग में और रेडियो फसाना 97.1 एफएम में। तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो शो हमने 10 बजे स्टार्ट किया था, अब वो अपने इख्तिताम के काफी करीब पहुंच चुका है। और ठीक इसी तरह से अभी तो बहुत सारी बातें करनी थी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना था, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और समटाइम्स हम बस सोचते ही रह जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जिंदगी बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजर जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान जिंदगी में करना चाहता है लेकिन टाइम की कमी के सबब वो नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो लोग वक्त पर अपना काम मुकम्मल नहीं करते या फिर इंतजार करते हैं अगले आने वाले कल का, सो वो हो सकता है कि आने वाला अगला कल आए ही ना। तो कोशिश किया करें कि जो काम आपके माइंड में चल रहा है उसको उसी वक्त मुकम्मल कर लें, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जिंदगी में न जाने अगले पल क्या हो जाए, किसी को भी नहीं मालूम। सो जैसा कि ब्रेक से पहले आप सभी से मैंने इंग्रेडिएंट शेयर कर दिए थे, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके रेसिपी के प्रोसीजर की जानिब के किस तरह से हम बनाएंगे इस रेसिपी को। और लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये ट्रैक। अच्छा, ये ट्रैक हमारे एक लिसनर ने हमें कहा है कि शो में शामिल कर दें। वैसे तो मैंने ये गाना नहीं सुना लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। तो आइए जरा आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये गाना सुना हुआ है, जिन्होंने सुना हुआ है वो बताएं हमें, और जिन्होंने नहीं सुना तो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक।

ओके तो लिसनर्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन पीसेस को अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के लिए रख देंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके ऊपर हम अच्छे से नमक, काली मिर्च, लहसुन पाउडर, इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से लगा कर, ठीक है, और इस तरह से मैरिनेट करेंगे कि जितने भी स्पाइसेस हैं इनका टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाए, और बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से जूसी हो जाए, टेंडर हो जाए।

से तो लिसनर्स रेसिपी आप सभी से शेयर करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ हमें एक रिकमेंडेशन आई है, सॉन्ग रिकमेंडेशन, यानी कि हमारे एक बहुत ही प्यारे लिसनर चाहते हैं कि ये गाना शो में प्ले किया जाए, तो उनकी फरमाइश पर लगाते हैं ये गाना। गाने के उस पर बताती हूँ आपको, रेसिपी बहुत सिंपल सी है, बेसिक सी है, लेकिन फिलहाल के लिए सुनते हैं ये ट्रैक।

सी तो लिसनर्स, अब जरा स्टेप नंबर टू की जाने पड़ते हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एक पीस को अच्छी तरह से उठाएंगे, ठीक है, उसको हम एग में कोट करेंगे। कोट करने के बाद साथ ही साथ ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ठीक है, फिर अगेन उससे हम कोट करेंगे, और कोट करने के बाद अच्छे से हम अपने चिकन पीसेस को फ्राई कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने चिकन पीसेस को इतना फ्राई करना है कि वो हल्के से गोल्डन हो जाए, लेकिन उनका कलर बिल्कुल भी डार्क ना हो, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से जो हमारी रेसिपी होती है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। और कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ है वो दिखने में अच्छी ना लगे तो इंसान का कभी भी खाने का दिल नहीं करता। सो इसीलिए जब भी आप कोई भी रेसिपी बना रहे हों तो लाजमी कोशिश किया करें कि आप ओवर कुक मत करें। अब स्टेप नंबर थ्री में आपने करना है स्पेगेटी को अच्छे से नमक एक चम्मच डालकर, साथ ही साथ 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल, ठीक है, इसको डालकर अच्छे से बॉईल कर लेना है आपने, ठीक है। बॉईल करने के बाद एक पैन में थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस डालें, उसी में बॉयल स्पेगेटी, साथ ही साथ आप चिकन फिले ऐड कर दें, ठीक है, और उसके ऊपर से आप थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दें, और टडा, आपकी रेसिपी हो गई तैयार। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश किया करें कि कोई भी आप रेसिपी बनाएं तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया करें कि वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, डिलिशियस लगे, क्योंकि खाना इंसान का तभी खाने को दिल करता है जब वो ओवरऑल लुक उसकी बहुत अच्छी हो। सो डियर लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी चटपटी सी इंस्टेंट रेसिपी। वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाजमी फीडबैक मुझसे शेयर करिएगा, और अगर इस हवाले से आपका हो कोई सवाल तो 01157100971 आप इस नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्यूरीज को दूर करूं। साथ ही साथ लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, या इसके अलावा आपको चाहिए कोई DIY मास्क या फिर कोई होम रेमेडी, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए भी मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर हवाले से आपकी चॉइसेस का ख्याल रखा जाए। सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही आज के शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, यानी कि आज द टी वर्ड डायलॉग अपने अख्तिताम को पहुंचा। आप सभी से मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारे नए एडवेंचर्स के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए लिसनर्स, शो खत्म हो रहा है लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह और आपकी जिंदगी बाकी है। सो कोशिश किया करें कि आप अपने पूरे दिन को कामों में सर्व करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे पॉजिटिव काम किया करें। मोटिवेशन मिलती है इंसान को पॉजिटिविटी से। सो अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अपने दिल में दिमाग में जगह देंगे तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, आपको हर चीज में ही नुक्स दिखाई देंगे। सो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना आप ना मैं ना हम। सो जिंदगी को इन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ इंसान को जीना सीख लेना चाहिए, और साथ ही साथ जिंदगी में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां इंसान को तहमुल मिजाजी की ज़रूरत होती है। सो जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ उन सभी लोगों का ख्याल रखें जिनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हमारा कोई भी एक वर्ड या फिर कोई हमारा एक जुमला किसी दूसरे की ज़िंदगी को किस कदर डैमेज कर सकता है। सो इन ही छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, बाकी खुश रहा करें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों और आप इस गाने को सुनते हुए जाएं। सो शो में हमने सभी वही गाने प्ले किए जो आपको पसंद है। अब जरा मैं सोच रही हूँ कि शो का इख्तिताम होने वाला है तो क्यों ना मैं एक ऐसा गाना प्ले करूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। सो बेसिकली मुझे रोम कॉम टाइप सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं जो कि ओल्ड हिंदी वाइब्स दें, तो ये गाना कुछ उसी तरह का है। तो आइए मिलकर सुनते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

दे दी मोहब्बत ना सिला कोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: और उसी के साथ साथ जो लोग निकले हैं ऑफिस की तरफ, बताइएगा दिन कैसा गुजर रहा है आपका। लेकिन उससे पहले आपने करना ये कि मुझे मैसेज करना है, मुझे तक अपना पैगाम पहुंचाना है, किसी प्यारे के नाम कोई छोटा सा पैगाम करवाना चाहे, या फिर कोई ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहे समझ वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं इस आवाज़ की दुनिया में, सो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं। गूगल पर ही सर्च कीजिएगा radiofusa.co.uk, वहाँ से आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं। आप सिर्फ मैसेज के थ्रू नहीं प्रोग्राम में शामिल हो सकते, बल्कि अपनी आवाज़ को भी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। आई मीन के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप लाइव कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी हमें दिला सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या करते वक्त हमें सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, छोटा सा नंबर है, इसको सेव करना पड़ेगा। नंबर एक बार फिर से अगेन नोट करवा देती हूँ, 01157100971। हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक में रखती हूँ, उस टॉपिक के बाद से डिस्कस स्टार्ट की जाती है। और मेरे ख्याल में आज का दिन कोई मतलब इतना खास टॉपिक मेरे पास था नहीं, तो मैंने ऐसे ही आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी है। कभी कभार जो है ना वो शेड्यूल से हट के भी जो है ना काम काज कर लेने चाहिए। मतलब अगर हम सुबह सुबह उठकर नाश्ते में एक ही चीज़ हमेशा खाते हैं ना, तो कभी कभार नाश्ता चेंज भी कर लेना चाहिए। सो इसी तरह हर बार जो है वो टॉपिक ही नहीं रखने चाहिए, बल्कि कभी कभी रैंडम बातें भी करनी चाहिए ताकि आपको दुनिया की खबरें मिलती रहे और साथ ही में मेरी आवाज़ भी, और वही बात ना, फिर मस्ती तो मैं आपके साथ करती हूँ, तंज़ो मज़ाक तो आपके साथ चलता ही रहता है मेरा। तो दिन है आज थर्सडे, और थर्सडे का दिन जो है वो अमूमन जो है वो उस तरह का नहीं होता मज़ेदार, क्योंकि वीकेंड हो रहा होता है और मेरे ख्याल में इसको क्लोजिंग का डे कहा जाता है। और इस दिन जो है वो एक अजीब सी थकन सी भी होती है और मूड भी थोड़े से अपसेट होते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे भी होगा और बहुत से काम जो है वो पेंडिंग पे फिर आ जाएंगे, फिर उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, वीकेंड के बाद फिर वही बात आ गई कि काम आज का, वो ऐसे कहते हैं ना कि आज करो कल का काम आज पे नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब आज के काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वो खुद ब खुद छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं, जब फ्राइडे आ जाएगा फिर फ्राइडे वाले दिन जो है वो उस तरह से कामकाज नहीं हम कर पाते। फ्राइडे को ज़्यादातर गैदरिंग भी होती हैं, फैमिली गैदरिंग मतलब दोस्तों के साथ कहीं आना जाना ये भी चीज़ लगी रहती है, और फिर वीकेंड आ जाता है और वीकेंड पर उस तरह से इंसान जो है वो मतलब घर पे ही होता है, तो फिर काम तो होता नहीं है, फिर वही काम पेंडिंग में चले जाते हैं, फिर वो मंडे को आगे करने पड़ते हैं, फिर मंडे को जब आप आते हैं तो मूड आपके थोड़े बहुत ख़राब होते हैं। सो आई नो के वीकेंड के बाद उसे रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले अभी जाते हैं हम जैसे लोग जो आपके लिए आते हैं ना वीकेंड के बाद। मैं तो जाहिर सी बात है मेरा तो आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने वीकेंड के दिन के दो दिनों की बातें जो है ना वो छुपा के रखी होती है, संभाल के रखी होती है आप सबके लिए, ताकि मैं उस लंच बॉक्स को आपके साथ आके ओपन करूँ जिसमें ना सिर्फ खाना हो बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हों जो आपके साथ शेयर करूँ, और मैंने शेयर करनी भी होती है। मैं अक्सर जो है ना वो वीकेंड पर बहुत सी चीज़ें ऐसी बहुत से ऐसे काम भी करती हूँ, बहुत सी ऐसी मस्तियाँ भी करती हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीखती हूँ जो मैं कहती हूँ कि मैं आके आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जो है ना मंडे का वेट करना पड़ता है, और मंडे जो है वो आता बड़ी मुश्किल से है। मंडे जो है ना वो आता मुश्किल से, पर मेरा सैटरडे थोड़ा मुश्किल से गुजरता है, और सैटरडे गुजर जाए तो संडे भी गुजर ही जाता है। खैर अभी के लिए जो है वो गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा और साथ हमारा रहेगा ठीक 2 बजे तक, बट अभी के लिए जो है ना प्रोग्राम में वो जिसे कहते हैं ना ब्रेक, अभी के लिए प्रोग्राम में हाल होने लगी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि स्टूडियो की दाल मशीन पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हम साथ साथ तो फिर ये भी साथ साथ, अगर हम साथ नहीं होंगे तो कौन साथ होगा, कोई भी नहीं होगा यार, हम ही होंगे। खैर बाकी तस्वीर भी आपके साथ जुड़ी रहेगी हमारी, और किसी भी तरह की राय किसी से लेना चाहे तो आप लीजिएगा, पर अभी के लिए इस प्रोग्राम में हाल होने वाली छोटी मशहूर ब्रेक को एंजॉय कीजिएगा, इसके बाद एक छोटी फरमाइश उसको पूरा करेंगे। अभी तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द 97.1 FM एंड ऐप, मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है,
3: यार घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
11: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी, वाइब भी।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आप सुन रहे हैं सलूराज की सोल। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में हाल हुई थी एक छोटी सी मशहूर ब्रेक के उस पार रही आपसे मुलाकात, लेकिन वही बात आ गई कि अभी जो है ना वो गपशप आपके साथ जारी करेंगे। टाइम बहुत जल्दी से गुजर जाता है, एक तो मुझे जब आपके साथ गपशप करने का मज़ा आ जाता है तो या तो कमर्शियल ब्रेक हाल हो जाती है प्रोग्राम में, या फिर ऐसा हो जाता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि टाइम से चलती है। लेकिन यार अभी के लिए प्रोग्राम में जो छोटी सी फरमाइश है उसको पूरा करे जाते हैं, इसके उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड दैट विल दिस खूबसूरत से छोटे से ट्रैक के उस पर।

आप तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुने हैं सलूराज की। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी फरमाइश को पूरा किया था, इसके बारे में आपसे मुलाकात भी गपशप आपके साथ ज़रूर जारी करेंगे। मैं भी जो है ना प्रोग्राम में एक और छोटी फरमाइश मौजूद है, तो मेरी कोशिश है इसको भी पूरा कर दूँ। गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी भी करूँगी, आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाती रहूँगी। ये ना हो कि आप ये कहेंगे सलूराज बोलती ही नहीं है, वो बोलेंगे बोलेंगे जरूर बोलेंगे। आज दरअसल मसला भी है कि गला भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है और बोलने में दिक्कत भी महसूस हो रही है, लेकिन हम ज़रूर बोलेंगे। बोलने वालों को जो है ना वो ऊपर वाला हिम्मत देता है और फिर आवाज़ जो है वो खुद बहुत निकलती है। और वैसे भी अगर आप जैसे प्यारे लोग हमें सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो फिर हम क्यों नहीं बोलेंगे। प्रोग्राम में शामिल होकर किसी के नाम कोई पैगाम करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। या फिर कोई ट्रैक किसी प्यारे के नाम डेडिकेट करना चाहें वो भी कीजिएगा, या फिर कोई ट्रैक आप सलूराज के नाम करवाना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस उसके लिए आपको करना है कि नंबर को नोट करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव। सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सवाल आइए इसी के साथ चलते हैं एक और छोटी सी फरमाइश की जानी। फरमाइश थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, हम शामिल कर देते हैं कोक स्टूडियो सीजन 9 पार चन्ना दे दिसे कुल्ली यार दे, आई थिंक सो के यही है। सवाल आइए सुनते हैं इस खूबसूरती कोक स्टूडियो की प्यारी सी वोकल को, मिलते हैं इसके उस पार। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाउंज आवाज आप सुने हैं हमेशा की तरह सुलराज की सुलसी के साथ। प्रोग्राम में छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, ट्रैक थोड़ा सा लंबा ही हो गया तो वो दरअसल एक छोटा सा जरूरी काम भी याद आ गया था, मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी कर लिया जाए। लेकिन अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मेरे पास काफ़ी सारी फरमाइशें मौजूद हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे पूरा करूँ, क्योंकि मेरा दिल भी है आपके साथ थोड़ी बातें भी करने का और टाइम भी बहुत कम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तीन को तो मेरी फरमाइशें पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन अभी के लिए कोई भी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि प्रोग्राम में जो है वो कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। और फिर ये ना हो मैं कोई ट्रैक शामिल कर दूँ और फिर आप उसको अच्छे से सुन भी ना पाए, आपको मज़ा भी ना आए, आप इन्जॉय भी ना कर सकें। तो साथ देना है, साथ होने का एहसास दिलाना है, प्रोग्राम में शामिल होना है और अपनी आवाज़ भी सुनानी है। किसी को कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर खूबसूरत सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। बट अभी के लिए हमारा जो अगला सेगमेंट से स्टार्ट हुआ जाएगा वो होगा म्यूज़िक का, क्योंकि मैं अपना लास्ट सेगमेंट म्यूज़िक का ही रखती हूँ। और म्यूज़िक में जो है वो ना सिर्फ ट्रैक प्ले किए जाते हैं बल्कि उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी, गपशप भी की जाती है, कि डिटेल से डिस्कस भी उनको किया जाता है डिटेल से। सो वेल, अभी तक के लिए जो है वो इतना ही कही देती हूँ कि प्रोग्राम में जो है वो कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ। एक बार फिर से सलूराज मिलते हैं इस खूबसूरती प्यारी सी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

हम उसी के साथ साथ प्रोग्राम में छोटी मशहूर खबर हुई थी, मशहूर के बारे ही आपसे मुलाकात। अब वक्त हुआ जाता है, काफ़ी कम टाइम रह चुका है और लास्ट सेगमेंट में मैंने म्यूज़िक रखा होता है ताकि मैं आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकूँ प्रोग्राम में। ऐसे मेरी फैमिली में जो है ना, ताके से मुझे याद आ गया, मतलब हमारी फैमिली में थे कोई, मतलब दूर दराज के, तो वो हर बात पे ताके कहते थे, ताके ताके, तो वो मुझे एकदम से याद आ गया और हंसी आ रही है, मुझे समझ आ रही है मैं हंसूँ कैसे, मतलब यहाँ पे हंसी तो आपने भाग देना है सबने। प्रोग्राम में जो है चेक को शामिल कर देते हैं, जो फरमाइश हमारे पास मौजूद है उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि आप फिर ताकि सो कहते हैं सो आप जो है वो उदास ना हो, बोर ना हो। सो बस आइए सुनते हैं खूबसूरत से ट्रैक को, मिलते हैं ट्रैक के उस पर, आएगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड डैफ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स पांच बाज, आप सुने सलवराज की सोलो। इसी के साथ साथ ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है क्योंकि लास्ट एक दिन हमारा होता ही म्यूजिक है, और म्यूजिक जो है वो आपकी मर्जी के पिखी जाएंगे। डेफिनेटली फरमाइश मुझे पूरी करनी होती है आप सबकी। अभी अचानक से जो है ना, मैंने एक ट्रैक प्ले किया था और अचानक से फिर वो बंद हो गया। कैसे वो मेरे साथ दरअसल क्रॉस पे हाथ लग गया तो वो ट्रैक रुक गया। सो सॉरी, मैं आपकी इस फरमाइश को अगेन पूरा ज़रूर कर दूंगी फिर कभी से। अभी के लिए जो है एक और छोटी सी फरमाइश है उसको हम पूरा कर देते हैं, फिर ग्राम में शामिल करते हैं एक और छोटी सी आवाज़ को। सो इस आवाज़ के उस फारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड दैट। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस फारे।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्याम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाने आप सुने हैं राज की सुरसी के साथ साथ। फिर ग्याम एक छोटी फरमाइश को शामिल किया था, फरमाइश के उस पर रही आपसे मुलाकात। अभी जो है अब थोड़ी बहुत आपसे गपशप भी कर लेते हैं, ये ना होना कि टाइम गुजर जाए और फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें होने देना, हमने गपशप का सिलसिला जारी करना है। बताइएगा कि प्रोग्राम में कैसा लगा आपको आज का साथ, आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ही आया होगा। और वैसे भी जहाँ पर सलू राज मौजूद हो ना, वहाँ पर मैं किसी को बोर होने भी नहीं देती और ना ही जो है किसी का दिन बुरा गुजरता है। हाँ, दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके जो 2 घंटे थे ना, ये बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। लेकिन यार ट्रैक की बात की जाए तो मैंने अपना लास्ट सेगमेंट ट्रैक का इसलिए रखा हुआ है कि अमूमन जो है मैं आपकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती, लेकिन इसलिए लास्ट सेगमेंट जो है ना मैं म्यूज़िक का रख देती हूँ। लेकिन म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक जो है ना, ये किसी न किसी वजह से बनाए जाते हैं। मतलब इनके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जैसे कि अब आपने तलहा अंजुम का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अभी भी आपने भी शायद देखा हो, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था और उन्होंने कहा था कि जब उनको एक तरफा मोहब्बत होती है ना तो वो ट्रैक क्या मतलब गाना लिख देते हैं। मतलब इतना टैलेंटेड बंदा, और मैं बोलती हूँ कि यार इतने टैलेंटेड बंदे कहाँ से आते हैं। मतलब अगर मैं भी थोड़ी सी दुखी होकर बैठ जाऊँ, मुझे शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाए तो फिर मैं ऐसी ऐसी शायरी लिखती हूँ ना कि यार क्या ही मज़ा आता है। वही बात आ गई, जब बंदा अपने फ्लो में आता है ना तो फिर वो लिख देता है, बहुत कुछ लिख देता है। लेकिन हर ट्रैक के पीछे ज़रूरी नहीं है कोई ना कोई वजह भी मौजूद हो। बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जो हमें अपनी बात में फंसाने की कोशिश कर देते हैं, बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गानों की हद तक जो है ना वो सिर्फ उनको एंजॉय करें, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना उस साइड पे लेकर आएं। बट अभी के लिए जो है ना मेरे पास एक और फरमाइश थी, तो उससे पहले मैंने अपनी पसंद का सोचा एक छोटा सा ट्रैक शामिल कर देती हूँ, साथ आपके साथ गपशप कर लेते हैं और साथ इस ट्रैक को भी सुन लेते हैं। अभी जो मैंने आपके अपने दरमियान ट्रैक शामिल किया, ये अभी ड्रामा चल रहा है, अभी मेरे ख्याल से ही आया है, और मेरे महबूब ट्रैक का नाम है, और मेरे ख्याल में ड्रामे का नाम है एक और मोहब्बत, या आज मेरे ख्याल में ही है। तो अभी इस ड्रामे में जो इनकी एक्टिंग है वो बड़ी कमाल की है, और इस ट्रैक को जिन्होंने गाया है, इनके जो सिंगर हैं, उन्होंने अभी इससे पहले जो है मतलब एक ड्रामा था इश्क मुर्शद, उसमें जो है वो ट्रैक भी इन्होंने गाया था, और मतलब इनकी जो बीट है ना वो काफ़ी मिलती जुलती है, सो ट्रैक भी मुझे उस तरह का लगता है। बट अभी आहद जमीर का जो ड्रामा आया ना, इससे पहले जो ड्रामा था उसमें वो थोड़े सीरियस थे, मतलब गुस्से वाले नियोन टाइप, वो चंगेज़ खान उस तरह का होता है ना, मतलब नायोन इस तरह के कोई आवाज यूज़ होते हैं उस तरह के थे। बट अभी जो इनका ड्रामा है ना, इनमें बहुत फनी है और बहुत बहुत बहुत फनी और बहुत मजे की, मतलब एंकर है आई थिंक, सो न्यूज़ एंकर है। हाँ, आप भी इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभार जो है ज़िंदगी में चेंजिंग ले आनी चाहिए। हम लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी से थक के ना, मतलब अपनी ज़िंदगी से थक के, दुनियावी चीज़ों से थक के, इन ड्रामों को अगर देखे ना, ऐसे फनी ड्रामों को, ऐसे ड्रामों को, तो थोड़ा सा माइंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। सो कर भी देना चाहिए, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को हमेशा फर्स्ट पे रखें। अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों को आप जितना खुश करते रहेंगे वो कभी खुश नहीं होंगे। सो कोशिश ये करें कि अपने आप को पहले रखें, अपने आप को खुश रखें। बट उसी के साथ साथ जो है वो ट्रैक मेरे आपके दरमियान जो अभी मैंने शाम किया, इसको सुन लीजिए, फिर इसके उस पर आपसे चाहेंगे इजाज़त। अभी तक के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाधक और रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो एक छोटी सी फरमाइश अपनी शामिल की थी और साथ ही मेरी आपसे मुलाकात अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में वक्त काफ़ी कम रह चुका है, स्टूडियो की डायल मशीन पर वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का और टाइम बहुत सख्त होता है, मेरा दिल भी नहीं करता जाने का। वो कहते हैं ना कि जब आपसे गपशप करने का मज़ा आने लग जाता है, आपके साथ के साथ होने का मज़ा आने लग जाता है, तो टाइम ख़त्म हो जाता है। ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, एक बार आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी। कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोड़े जाती हूँ आपको एक और छोटी सी फरमाइश के साथ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

मेरे और आपका साथ है दो से चार मंडे टू फ्राइडे, मुख्तलिफ उमूर पे बात करेंगे अभी, यहीं मत जाइएगा।

आप में से कुछ लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे, तलबा अपने स्कूलों से घर की तरफ रवाना होंगे। कुछ कीजिए, एहतियात के साथ सफर कीजिए, ड्राइविंग के उसूलों का ख्याल रखिए। और किसका दिल दुखाए

0: कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम अभी बाकी है, सुनते रहिए FM 97.1 एंड टैप यूके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
1: जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मेरे हाथ में। It's great for art, emotions deep in me for art, but the finer way to be

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Get ready to move.
14: It's all about the beats.
15: Wow,
16: Only Tune Super Hit Channel.
17: Fizz on 97.1 FM.

फजा 97.1 FM में मेरा और आपका साथ है। 2 से 4 कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम में बाकी हैं। अपनों से ऐसी लड़ाई न लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाए, इसलिए रिश्तों को तरजीह दीजिए ना कि बातों को। बातें बुला दीजिए और रिश्ते रख लीजिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

याद रखें, किसी को फायदा नहीं दे सकते तो उसका नुकसान भी ना कीजिए, अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो तनकीद भी ना कीजिए, और अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो गम भी ना दीजिए, किसी को मोहब्बत नहीं दे सकते तो नफरत भी ना दीजिए, और अगर किसी का सहारा नहीं बन सकते तो मदद भी ना मांगिए, और किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बददुआ कभी ना दीजिए, क्योंकि पलट के आ सकती है बददुआ।

बच्चों की वैक्सीनेशन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फ्राहम करती है और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मदद देती है। बचपन में होने वाले इन्फेक्शन शदीद बीमारी, हॉस्पिटल में दाखिले और जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकते हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारे कम्युनिटीज में बहुत आसानी से फैल सकती हैं। अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो इन बीमारियों से महफूज नहीं है। NHS की जानिब से फ्राहम की जाने वाली बच्चों की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और इनका सेफ्टी रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि बच्चों को वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने के लिए अपने GP से राब्ता करें। क्या आपके बच्चे की तमाम वैक्सीन मुकम्मल और अप टू डेट हैं? अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.uk/childhoodvaccinations।

इंसान को जिंदगी में धचके लगते रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता। अगर आप जानते हैं तो भी हमें मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ 0115710971 पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। लेकिन तब तक मैं आपको बता देता हूँ, तब जब उसको पता चलता है कि उसे गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था।

कभी भी गुरूर ना कीजिएगा, क्योंकि गुरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद रखिएगा कि दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर में। गुरूर ना कीजिए क्योंकि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा। करते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

वेलकम बैक रेडियो फजा के प्यारे सामीन और लिसनर, आपको मेरी तरफ से प्रोग्राम में खुश आमदीद, क्योंकि प्रोग्राम अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आप पता है कि लोग भी कितने अजीब हैं कि मरना कोई नहीं चाहता मगर मरते सब हैं, और रोना कोई नहीं चाहता मगर रोते सब हैं, इसी तरह गिरना कोई नहीं चाहता मगर गिरते सब हैं, इस्तेमाल होना कोई नहीं चाहता मगर होते सब ही हैं, और हारना कोई नहीं चाहता मगर हारते सब ही हैं, धोखा कोई नहीं चाहता मगर खाते सब ही हैं, और बहुत लोग तो धोखा देते भी हैं। कुछ बातें हमेशा याद रहती, जैसा कि अपने पसंदीदा ख्वाब की तदफीन करना, अपने किरदार पे बातें सुनना, अपना मुश्किल वक्त अकेले गुजारना, और शदीद सरदर्द में शोर बर्दाश्त करना और आंसू।

याद रखिए, जो शख्स अपने अंदर ही अंदर गहरा चला जाता है वही ऊपर को उठता है और वही रिफत हासिल करता है। यही कुदरत का उसूल है। जो दरख्त जिस कदर गहरा जमीन के अंदर जाएगा उसी कदर ऊपर को जा सकेगा और जिस कदर तनावर होगा। अपनी सारी जिंदगी ऊपर ही ऊपर अपने खोल को और अपने बाहर को जानने पर लगा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि असल इंसान हमारे अंदर रहता है।

अगर आपको अपने आप को समझदार समझना है तो जरूर समझिए, पर इतना भी समझदार ना समझें कि दूसरे सभी लोग आपको बेवकूफ लगने लग जाए। इसलिए अपनी जात से वाबस्ता लोगों को कभी भी डिग्रेड ना कीजिए, वही आपका सरमाया है और सरमाया कुल हयात होता है।

मेरा और आपका साथ हर सोमवार से जुमा तक 2 से 4 तक होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फजा 97.1 FM एंड टैब को सुनते रहिएगा, क्योंकि फजा आपका अपना रेडियो है। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रियाकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। देर से आने पर माजरत, लेकिन वो कहते हैं कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, अगर थोड़ी सी देर सवेर हो जाए तो इट्स ओके। वजना बदन से उस्मान खान, प्रोग्राम ड्राइव टाइम, फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से आप मुझे सुन रहे हैं। इसके अलावा आप फजा डैब पर भी मुझे सुन रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में आपको ये मेरे पीछे कागज आगे पीछे करने की आवाज तो आ रही होगी, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज इस स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ एक अदद और पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ या तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी तारीफ या तारुफ में कुछ ना कुछ तो कहना होगा। जी हाँ जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नई आवाज़ जो आज आपको शायद थोड़ी सुनने को मिलेगी, लेकिन अनकरीब आपको पूरे दो दो घंटे के लिए सुनने को मिलने वाली है। मेरी मुराद है जी हमारे आज के मैं आज के दिन एज अ गेस्ट ही आपको लूंगा, मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। जी हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म अली। मौज़म कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे दोस्त मुझे बताइए इतनी डरी डरी सी आवाज़ क्यों है?
1: नहीं, डरी डरी नहीं है इंशाल्लाह। मैं आज तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज इस शो का आगाज़ खुद करूँ।
0: ज़रूर आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में इंट्रो सुनेंगे हम, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो जानदार किस्म की आवाज़ में बोलेंगे ना, यू नो, वो पता चले कि मौज़म जो है पहली बार रेडियो ज्वाइन कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, आपको ये महसूस होने नहीं दूंगा कि मैं एज अ न्यू ज्वाइनर और एज अ न्यू आरजे इस जगह मौजूद हूँ।
0: चलिए डन, मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, ज़रा शुरुआत हमें सुनाए ना हमारे लिसनर्स को भी।
1: जी मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और एक प्यार बड़ा सलाम है तुम्हारा सुनने वालों के नाम। मैं हूँ आरजे मौज़म और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम लाइव फ्रॉम नॉटिंघम। मेरा और आपका साथ अगले दो घंटों का होगा, और
0: इन दो घंटों में न सिर्फ आप मौज़म की आवाज़ सुनेंगे, बल्कि आप थोड़ी थोड़ी मेरी भी आवाज़ सुनते रहेंगे। वो क्या है ना कि हम भी राहों में पड़े हैं, तो हम भी चाहेंगे हमारी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। मौज़म थोड़ा सा बोलने का मौका देंगे मुझे?
1: जी जी बिल्कुल, आप बोलें ना सर।
0: खैर जनाब, हम लोग सिर्फ गपशप नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके लिए प्यारा सा म्यूज़िक भी शामिल करेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी का कोई ट्रैक हो जो आप सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप मौज़म को ज़रूर बता सकते हैं। मौज़म आपको तमाम तर वो रास्ते बताएंगे जिन रास्तों से होकर आप हमारे पास आएंगे। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत क्यों ना मौज़म एक अरेबिक म्यूज़िक के साथ की जाए।
1: जी बिल्कुल, वैसे भी कुछ लोगों को अरेबिक काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये प्रोग्राम इस जिस टाइम पे नशर किया जा रहा है तो वो ये ड्राइव टाइम है। मोस्टली जो भी हैं अभी ऑफिस से या कुछ लोग अपनी शिफ्ट्स क्लोज करके अपने घर को जा रहे होंगे, कुछ पैदल वॉक करते हुए जा रहे होंगे, कुछ अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, स्पेशली क्योंकि ये प्रोग्राम ही ड्राइवर हजरात के लिए है, तो मुझे ये लगता है कि मैं और कुछ लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको ये अरेबिक सॉन्ग्स पसंद हैं या कौन से सॉन्ग्स पसंद हैं।
0: बिल्कुल जनाब, आप हमें बता सकते हैं कि आप अरेबिक म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियन म्यूज़िक को लाइक करते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं आप मौज़म को बताइएगा, मौज़म ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल ये खूबसूरत सा अरेबिक म्यूज़िक आप सभी सुनती हुई खूबसूरत सी समात होगी नज़र, इसके उस पार होगी हमारी फिर से आपसे मुलाकात, रहिएगा हमारे साथ साथ।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM एंड डैब। मैं आपको मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपको अरेबिक सॉन्ग भी अच्छा लगा होगा। जो इस वक्त नहीं शामिल हुए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम आरजे मौजूम है और मेरे साथ बैठे हैं आरजे उस्मान, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM लाइव फ्रॉम नॉटिंगम, हर वक्त हर जगह सिर्फ आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अरेबिक सॉन्ग अच्छा लगा होगा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, अगर आप इंडियन गाने सुनना चाहते हैं या कोई ऐसी भी फरमाइश या किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर अपना मैसेजेस दें, और मैसेजेस करने का तरीका भी आपको बताता चलूँगा। अपना अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो इसके लिए आप नंबर सेव कर लें, नंबर मैं बिल्कुल आपको आराम से बताऊँगा। नंबर नोट कीजिएगा 01157100971। मैं दोबारा रिपीट करूंगा 01157100971। फॉर लाइव स्ट्रीमिंग www.radiofaza.co.uk। और अगर आप मुझे नॉटिंगम से किसी और जगह से सुन रहे हैं या ऐसी जगह जहां सिग्नल नहीं आते या ऐसी जगह जहां हमारी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, या आप तो आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं

0: सुन रहा हूँ। तो वेलकम जी अली साहब, आप लिखते हैं जी आपका शो बहुत अच्छा है और मैं उधर यूके में भी आपका शो ज़रूर सुनता था, डेली सुनता हूँ और अभी भी सुन रहा हूँ। माशाल्लाह आरजे उस्मान है जो, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आपको भी वेलकम कहूँगा। थोड़ी सी ट्रबलेंस है जी, बिल्कुल अली साहब, इसी यही बात है, थोड़ी सी ट्रबलेंस तो होगी शुरू शुरू में, बंदा हर एक काम करे तो नर्वस होता है। मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आपने भी जब कभी भी कोई पहला काम शुरू किया है तो ज़िंदगी में या ऐसा कोई रिस्क लिया है जिसमें आपने कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा काम जो आपने फ़र्स्ट टाइम किया हो तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा था ना तो एक गले में या हाथ मेरे कंपकंपा रहे थे और मेरी आवाज़ लटक इस तरह कह रही थी कि मैं बयान नहीं उसको कर सकता।
1: चले खैर जी, ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा और इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं सीख पाता, वक्त लगता है उसको सीखने में। और आप, मैं हैरान हूँ कि मौज़म जो हैं वो पहली बार लाइव आए हैं और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त बोल रहे हैं, वगरना हमने और भी बड़े लोगों को सुना है जो कहते हैं मैं ठीक हूँ जी मैं ठीक हूँ
0: जी बिल्कुल।
1: खैर जी, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अभी प्रोग्राम में शामिल कह रहे हैं एक झलकता फड़कता हुआ ट्रैक उन तमाम दर लोगों के लिए जो इस वक्त हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा और इस बूस्ट अप म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा। इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात, रहेगा हमारे साथ साथ। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान खान और
0: आरजे मौज़म।
1: और आरजे मौज़म, मौज़म सही से बोले ना
0: मौज़म
1: जी, हाँ जी मौज़म।
0: बस क्या करें, बस सर थोड़ा सा एक्सेंट हो रहा है सर,
1: हिचकोले और हेजिटेशन साथ साथ हो रही है। कोई बात नहीं जी, इस म्यूजिक को सुनते हैं, लुट के वापिस आते हैं। कोशिश करता हूँ मैं मौज़म को मजीद बूस्टअप कर सकूँ इस म्यूजिक के थ्रू, और आप लोग भी मौज़म को मजीद अप्रिशिएट भी कीजिएगा और थोड़ा सा बूस्ट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आवाज़ जब आपकी मौज़म की नेक्स्ट आवाज़ जब आपको सुनने को मिले तो कम से कम वो एक ऐसी आवाज़ हो जिसमें आप पता चले कि मौज़म बात कर रहे हैं। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Get ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fazan 97.1 FM.

0: All right, once again, welcome back. आ चुके लुटके वापिस इस उम्मीद के साथ कि मैं ही नहीं बल्कि आप लोग भी हैं मेरे साथ साथ. न सिर्फ आप और मैं हैं बल्कि हमारे साथ मौसम भी तो हैं. ऐसा है ना कि रोज अकेले प्रोग्राम कर करके ना मैं भूल ही गया कि हमारे साथ एक अदद और बंदा मौजूद है. लेकिन खैर कोई बात नहीं जी, ऐसा तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में. वेल, मुझे कहते हैं उस्मान खान, साथ है मौसम और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ड्राइव टाइम. और ये ड्राइव टाइम आप तक पहुँच रहा है 97.1 FM एंड डैब की तवसत से. नए आने वाले तमाम तर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे जिन लोगों ने अभी अभी फजा 97.1 FM या डैब पर हमें ट्यून किया है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं. जनाब, ड्राइव टाइम में आपने चुप करके अपनी सीट पे नहीं बैठना बल्कि हमारे साथ साथ चलना है. ये सफर अभी काफी बाकी है तो इस सफर को मजीद खूबसूरत बनाना है. आप लोगों ने अपना साथ देकर साथ देने के लिए तरीकेकार वही पुराना है, लेकिन अगर आज आप पहली दफा आए हैं तो फिर आपको जहन नशी कर लेना चाहिए. आप जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर कौन सा है मौजूद?
1: अपने मोबाइल का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर है 01157100971.
0: जिस तरह से नंबर बता रहे हैं ना, अब मुझे वो बचपन वाली एक मशहूर याद आ गई. क्या थी वो? 09007861 टेलीकॉम कुछ ऐसा सा था. वो एक कमर्शियल थी, उसमें ऐसा बोलता जैसे आप बोल रहे हैं. अरे भाई, थोड़ी सी एनर्जी लेके आओ ना मेरी जान.
1: जी बिल्कुल, एनर्जी तो आएगी इंशाल्लाह. जब आपके मैसेजेस पढ़ते हैं हम तो एनर्जी तो आती है, क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा लाइव जा रहा हूं तो मैं ये देख के हैरान हूं कि काफ़ी सारे रिस्पांस, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है. कुछ मुझे राय भी दे रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, इस तरह की आपकी आवाज़ है या ये चीज़ है या वो. और कुछ ने जो मैंने क्वेश्चन आगे किया है उसका भी कहा है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह का ये काम हुआ है. तो आगे जाते हुए शामिल ज़रूर करूँगा. और एक बार फिर नंबर नोट कीजिए मैसेजेस शामिल करने के लिए. नंबर है 01157100971. मैं रिपीट करता हूँ, 01157100097. इसके अलावा अगर आप मुझे लाइव स्ट्रीम से देख रहे हैं या देखना जा रहे हैं तो radiofaza.co.uk.
0: अरे मौज़म, काश ये बात आपकी सच हो सकती कि लोग हमें देख सकते. अब मजबूरी ये है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग पे सिर्फ हमें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन ना लाइव जाऊं ताकि मुझे लोग लाइव देख भी सकें. यू नो, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, बहुत से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अब आप लाइव जा सकते हो. ना सिर्फ आप लाइव जा सकते बल्कि अच्छा खासा कमा भी सकते हैं. सो ये बेहतरीन चीज़ होगी. मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर के हम लोग जो है आपको ना सिर्फ लाइव आप हमें सुन सकें बल्कि आप हमें लाइव देख भी सकें. मजबूरी ये है कि फ़िलहाल आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग पर सिर्फ सुन ही सकते हैं. उसके लिए आपने गूगल पर जाकर वही जो मौज़म बता रहे हैं radiofaza.co.uk सर्च करना है और फिर आप हमें सुन सकते हैं. इसके अलावा और मौज़म कौन कौन से रास्ते हैं ये जिस तक हम तक पहुंच सकते हैं?
1: जी, इसके अलावा भी रास्ते हैं. रास्ता एक और है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फजा 97.1 की. एप्लीकेशन का नाम है रेडियो फजा 97.1 FM. फिर से नोट कीजिए, रेडियो फजा 97.1 FM.
0: Alright, तो मेरा ख्याल है ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है.
1: जी, ये दोनों पे अवेलेबल है और इसका लोगो जो है गोल्डन माइक के साथ होगा, ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा.
0: हाँ, पर्पल कलर का बैकग्राउंड है और गोल्डन माइक इसके ऊपर. ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक थीम है और ये हमारे CEO साहब, अल्लाह ने खुश रखे, इनका ये चॉइस थी कि इस कलर का जो है वो एक थीम होनी चाहिए. और ये बड़ी अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, बड़ी इसको अट्रैक्टिव कह लें आप. चले अट्रैक्टिव आप कह रहे हैं तो बस आपने कह दिया तो मैंने मान लिया. बड़ी अट्रैक्टिव सी है और एक रिच जो है वो वाइब देती है जब भी आप इसको देखते हैं. कभी आपका अगर दिल करे तो चप्पल उसमें आके आप हमारा स्टूडियो जो है वो विजिट कर सकते हैं. इशारा आम तो नहीं है, हर किसी को तो इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन आप रابطہ कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रابطہ कर सकते हैं. आप जब radiofaza.co.uk विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट तो वहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है. वहाँ पे आप मैसेज करके परमिशन ले सकते हैं, बल्कि आप हमारे प्रोग्राम में भी मैसेज करके परमिशन ले सकते हैं. होप सो के कल कला मौज़ ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने लिसनर्स को भी अपने प्रोग्राम्स में इन्वाइट करना शुरू करें. कोई एक आध ऐसी जब कभी मैं और आप इकट्ठे दोबारा प्रोग्राम करेंगे, तो मैं कोशिश करेंगे हम लोग मिल के कि एक हम ऐसी गेम रखें जिसमें हम अपने लिसनर्स को भी अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर सकें। लेट्स सपोज जैसे हम कोई गेम रखते हैं, कोई पहेली रखते हैं, कोई ऐसी चीज जो सही आंसर देगा, सबसे पहले जो सही आंसर देगा वो हमारे प्रोग्राम में लाइव हमारे साथ मौजूद होगा। अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हम इसका प्लान जरूर करेंगे और हम अपने लिसनर्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
1: जी बिल्कुल, आप लिसनर को भी शामिल करते हुए भी, मैं वैसे शो के शुरू में जो इस वक्त नए लोग ऐड हुए हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मैंने ऑलरेडी पहले ही सवाल कर चुका हूँ, आज भी सवाल किया है, इंशाल्लाह आते आने वाले प्रोग्राम्स में भी सवाल करूँगा ताकि आप लोग मेरे साथ शामिल होते रहें। आज का वैसे मैंने सवाल ये किया था कि ज़िंदगी में आपने सबसे ऐसा कौन सा रिस्क लिया है कि जिसमें आप घबराए हैं, या जिसमें आपने कहा है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी पर आपने कर ली है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने पीछे हटना नहीं है बस।

0: अवल जनाब, हमारी बातें इसी तरह जारी और सारी रहेंगी और आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है मौसम क्यों ना एक अच्छा सा ट्रैक जो है वो अब सुनाया जाए हमारे लिसनर्स को, वो कब तक आपकी बोर बातें सुनते रहेंगे।
1: ये तो बात है, बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान, के लिसनर को साथ साथ इंटरटेन भी करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ लोग इस वक्त बोर हुए जा रहे होंगे, घर अपनी ऑफिस शिफ्ट क्लोज करके जा रहे होंगे, तो सुनिए गाना।

0: commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Hits.
14: Music never sounded better.
15: Fazan 97.1 FM.
16: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम, और बंदे नज़ीर उस्मान खान आपके साथ। अब हमारा जो सेगमेंट चल रहा है उसमें हम पंजाबी ट्रैक शामिल कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई फरमाइश हो पंजाबी ट्रैक की तो आप मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कौन सा पंजाबी ट्रैक आप सुनना चाहेंगे। व्हाट्सएप पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 01157100971 पे, व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं radiofaza.co.uk पर, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। ड्राइव कर रहे हैं तो फजा डैप पर भी आप मुझे ट्यून कर सकते हैं। अब मैं आपके और इस म्यूजिक के दरमियान बिल्कुल भी हाइल नहीं होने वाला, एंजॉय कीजिएगा और बस मेरे साथ साथ रहिएगा।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM.
6: It's commercial time.
7: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
9: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
10: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
9: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
10: मुगल बिल्डर्स?
9: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
10: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
9: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
10: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
9: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें.

91.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: तेरी बात ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
11: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब भी।
12: You are listening 97.1 FM.

0: tune Super Hit Channel.
1: Fizz on 97.1 FM.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा, रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, जो ही हूँ।
14: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore, only in Dedication Hour.

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
5: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
6: hayatweddings.co.uk।
7: दिस इज 97.1 फाजा FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी

0: भी मौजूद है और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।